त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्वा सर्व नाम कथ कवन

सुवत नाम चलत वैसत सुवत जागत गुर मंत्र हृदय चतार। ऐसे जीवन की करतबता नू ऐसे गुणा नू धारण करते हैं जीओ। इस प्रकार साध संगत जी सतगुरु श्री गुरु नानक देव साहिब सच्चे पातशाह जी ने जनाया जगत दे अंदर सब तो वड्डी झूठ है सतगुरु जी तो बेमुख होना, सतगुरु जी तो मूंह फेर लेना, निगुरे रहना, सतगुरु सच्चे पातशाह जी की सिख्या धारण ना करनी, सतगुरु जी का अमृत ना छकना, निगुरेपण की झूठ नूं लाउण वाला सतगुरु कलगीधर साहिब जी ने साधन यह दसिया मर्यादा यह बनाई है। खंडे की पाहुल शुभता रहो बन हो खालसा परम निवार हो, गुरसिख गुरु वाला हो जाता अमृत छक के, ते जेड़ा अमृत नहीं छकता किन्ना रागा दा गवैया हो जावे, किन्निया वेदा दियां सुरतियां उचारदा रवे, किन्ने चंद सूरज दे वर्त रख लवे ते मस्या संगरांदा ते नदियां दरावां दरियावां ते नहाउंदा फिरे, किन्ने अन्न दा दान करे, किन्ना अपना नाम वड्डा कर लवे। ऐसे प्रकार भावें रिद्धियां सिद्धियां दे नाल मीह वरा देवे, धरती दान करे, पानी दान करे, ऐसे प्रकार श्वासां नूं दसम द्वार दे विच टकाउंदा होवे, सतगुरु जी वचन करना करदे ने किन्ने भी जतन कर लवे निगुरे पुणे दी झूठ नहीं उतरदी, किन्नियां चुलियां कर लवे, किन्ना मूंह धो लवे, अरकां तक बाहां गोडियां तक लत्तां मांझ लवे, तीर्थां ते जाके नहाउंदा फिरे निगुरे पुणे दी झूठ नहीं उतरदी, यह झूठ उतरदी ये अमृत छकने दे नाल, गुरु वाले बनने दे नाल। इस करके सतगुरु जी की सिख्या कलगीधर दे पुत्रो धीओ अमृत धारी होके जियो, ला दिओ निगुरे पुणे दी झूठ नू, सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे प्यार वाले सतगुरु जी दियां सपुत्रियां ते सपुत्र बनो, सारे भाई अमृत छको, सारे निगुरे पुणे दी झूठ नू ला दिओ, जिस दे नाल अमृत नाम पंज प्यारियां दे पासों प्राप्त हुंदा है, जिस अमृत नाम नू जप करके सफले होईदा है जियो। यह पावन उपदेश सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज साहब जी ने लड़ीवार कथा विचार राही बख्शे है। इसे प्रकार सावन सरसी कामणी चरण कमल स्व प्यार इस सावन के महीने द्वारा फलादेश द्वारा सतगुरु जी ने उपदेश बख्शे है। भाई साहब भाई तारू सिंह साहब सच्चे पातशाह जी की शहादत दे कुछ को सार अंश आप संगतां दे नाल सांझे कीते गए ने। समुची हाजरी भरदियां सेवा निभाउंदियां होईयां भुल्लां चुक्कां दी सतगुरु देव पिता ते सतगुरु जी दियां संगतां ने कृपालता करके खिमा अगे वास्ते समत बख्शिश करनी। अरजोइयां करिए महाराज जो महीना चढ़िया ये भी आप जी की बाणी पढ़द्या सफला हो जाए, मनुखा जन्म रूपी महीना भी आप जी की अमृतमई गुरबाणी पढ़द्या सिखी कमाद्या सफला हो जाए, चरण कमलों की प्रीति सेवा सिमरन नाम बाणी चढ़ती कला की दात प्यारी गुरसिखी नितनेम की परपकता बख्शिश करके निहाल कृतार्थ करो जी। भाई तारू सिंह जी की शहादत नूं कोटान कोट प्रणाम जुहार नमस्कार, लेखा कथे ना छूटिया खिन खिन भूलनहार, बख्सन हार बख्सलै नानक पार उतार। पावन गुर शब्द दियां अखीरलियां पंक्तियां पढ़ के

हरिय रोग हरिय शोक हरिय भरम हरिय करम हरि। अजय हरिय भय हरिय भेद हरिय छेद हरिय खंड हरिय भंड हरिय दंड।

त्व प्रसाद कबित खूक मल हरि गज गद हाँ विभूत दारी गिद्वा मसान बास कर करत है खूक मट बासी लग डोलत उदास मृग तरवर सदीव मोन साधी मरत है बिंद के सदैया दाहे हीज की बडैया देत बंदरा सदीव पाए नांगे फिरत है अंगना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक ज्ञान के विहीन छीन कैस के तरत है भूत बन चारि छित छौन सब दूता धारी पौन के आहारि सो भुजंग जानियत है तृण के बछैया धन लोभ के तजैया दे तो गौन के जैया मृग भैया मानियत है नभ के उड़ैया दाहे पंछी की बडैया देत बगुला बिडाल वृक ध्यान ठानियत है जित बड ज्ञानी तिन्नो जानी पै बखानी नाहे असन प्रपंच मन भूल आनियत है भूम के बसैया ताहे भूचरी गजैया कहे नभ के उड़ैया सोच रैया कह बखानिय फल के बछैया ताहे बांधरी गजैया कहे आदस फिरैया तद भूत कह पछानिय जल के तरैया को गंगे ऋषि कहत जग आग के बछैया सो जग और सम मानिय सूरज सिवैया ताहे कौल की बढ़ाई देत चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानिय नारायण कछ मछ तेंदुआ कहत सब कौल नाव कौल जय ताल में रहत है गोपीनाथ गुजर गोपाल सब थेन चारिखि के सनाम के महंत लहियत है माधव भवर ओ अटेरु को कन्हैया नाम कंस को बधैया जम दूत कहियत है मूड रूड पीटत न गूढ़ता को भेद पावे पूजत न ताहे जाके राखे रहियत है विश्वपाल जगत काल दीन दयाल बैरी सा

खंगा वै खंगा वै खंगा जोनि स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परे अंग परा परम प्रज्ञा प्रकाशी अछेद अंग छयाद अद्वय अविनाशी न जातं न पातं न रूपं न रंगे नमो आद भंगे नमो आद भंगे कृत कृष्ण से कीट कोट।

न नेहं न गेहं स नेहं स नाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न पाते न सत्रे न मित्रे सभूते भविखे भवाने या चित्रे नारायं नरंगं न रूपं न रेखं न लोभं न चोभंग भूतंग फेखं न सत्रं न मित्रं न नेहं न गेहं स देवं सदा सर्व सर्वत्र सनेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं जोनि अच्छयादद्वय जोहं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न शोकं भय निर्विखादं अछेदंग भेदंग कर्मंग कालंग खंडंग भंडंग प्रचंडंग पालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहं न गेहं न भर्मंग न भायंग न रूपं न भूपं न कायं न कर्मं न त्रासं न ब्रासं न भेदं न भर्मं सदैवं सदा सिद्ध बिरदं स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे नृयुक्तं प्रभा आदनुक्तं प्रतापे अयुक्तं गच्छयाद विक्ते यथापे विभुक्तं गच्छयाद अच्छ स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे न नेहं न गेहं न शोकं न शाकं परेयं पवित्रं पुनीतं गताकं न जातं न पातं न मित्रं न मंत्रे नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मं न भर्मं न शर्मं न शाके न वर्मं न चर्मं न कर्मं न वाके न सत्रं न मित्रं न पुत्रं स्वरूपे नमो आदरूपे कहूँ कंज के मंज के भरम भूले कहूँ रंग के राज के धर्म लूले कहूँ देश के बेस के धर्म धामे कहूँ राज के साज के बाज तामे कहूँ अक्षर के पक्षर के सिद्ध साधे।

कहूँ नेह गृह कहूँ देह दुखं कहूँ औषधि रोग के सुख सुखं कहूँ देव विद्या कहूँ दैत बानी कहूँ जछ गंधर्व किन्नर कहानी कहूँ राजसी साधकी तामसी हूँ कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हूँ कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं कहूँ भूमि की भुगत मैं भरम भुगतं कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हूँ कहूँ जज विद्या धरे मानवी हूँ कहूँ राजसी हूँ कहूँ राज कन्या कहूँ सृष्ट के पृष्ट के रिष्ट पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम बानी कहूँ गोक की काव कथा कहानी कहूँ अद्र सारंग कहूँ भद्र रूपं कहूँ मद्र बानी कहूँ क्षुद्र स्वरूपं कहूँ वेद विद्या कहूँ काव रूपं कहूँ चेष्टाचार चित्रं स्वरूपं कहूँ परम पुराण को पार पावे कहूँ बैठ कुरान के गीत गावे कहूँ शुद्ध सिखं कहूँ ब्रह्म धर्मं कहूँ वृद्ध अवस्था कहूँ बाल कर्मं कहूँ ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूँ नेह देहं कहूँ त्याग गृहं कहूँ जोग भोगं कहूँ रोग रागं कहूँ रोग हर्ता कहूँ भोग त्यागं कहूँ राजसाजं कहूँ राजरीतं कहूँ पूर्ण प्रज्ञा कहूँ परम प्रीतं कहूँ आरवी तोर की पारसी हो कहूँ पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूँ देश भाख्या कहूँ देव बानी कहूँ राज विद्या कहूँ राजधानी कहूँ मंत्र विद्या कहूँ तंत्र सारंग कहूँ जंत्र रीतं कहूँ शस्त्र धारंग कहूँ होम पूजा कहूँ देव अर्चा कहूँ पिंगुला चारणी गीत चर्चा कहूँ बीन विद्या कहूँ गान गीतं कहूँ मलेज भाख्या कहूँ वेद रीतं कहूँ नृत्य विद्या कहूँ नागबानी कहूँ गारुड़ गूढ़ कथा कहानी कहूँ अक्षरा पक्षरा मच्छरा हो कहूँ वीर विद्या भूतं प्रभा हो कहूँ छल छला धरे छत्र धारी कहूँ राजसाजं थे राजाधिकारी नमो नाथ पूरे सदा सिद्ध दाता छेदी अक्षयाद्विधाता नत्रस्तं नग्रस्तं समस्तं स्वरूपे नमस्तं नमस्तं तुअस्तं भूते।

रूप नरेह रुखं जे ताप न साप न शोक सुखं जे रोग न शोक न भोग भूयं जे खेद न भेद न छेद क्षयं जे जात न पात न मात पितं जे रचयं क्षत्रि छत्रचितं जे राग न रेख न रोग भणं जे द्वैख न दाग न दुख गणं जय अंडह ते ब्रह्मंड रचयो दस चार करी नव खंड सचयो रजत।

काल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रच अंडज सेतज उत भुजंगी ये देवा देव सराद पितंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग परम जात न पात न जूत जुतंग जय तात न मात न भ्रात सुतंग जय रोग न शोक न भोग भुवंग जय जंप है किन्नर जछ जुवंग नर नार नपुंसक जाहि किए गण किन्नर जछ भुजंग दिए गज बाजर थाधिक पाद गणंग भूत भवेख भवान तुवंग जय अंडज सेतज जीर्र जंग रज भूमा काश पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बली बन जास कियो फल फूल कली भू मेरा आकाश निवासितंग रज रोज एकादेश।

तब ताप करे नहीं नय कृपान इत पान पर जे फोकट धर्म सफेत जहै एक चित्त कृपान इत को जप है ते उया भव सागर को तर है भव भूल न देह पुनर्धर है एक नाम बिना नहीं कोट प्रति इम वेद उचारत सार सुती जो वारस के जस के रस है त्यो भूल न

भंज भंज जानिए, भूत भूत है सदा गंज गंज मानिए, अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है, समस्त सिद्ध वृद्ध दास देव सर्वसात है, अनाथ नाथ नाथ है, अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है, सदीव सिद्ध वृद्धता अनूप रूप स्वरूप है, अछिज तेज मानिए, सदीव सिद्ध शुद्धता प्रताप पत्र जानिए, नराग रंग रूप है, नरोग राग रेख है, अधोग ताग दग है, अभूत ब्रह्म फेक है, न तात्मात जात है, न पाद चिहन वर्ण है, अदेघ से अभीघ है, सदीव विश्ववर्ण है, विश्वम्बर विश्वनाथ है, विशेक विश्वभरण है, जिमी जमान के बिखे सदीव करम भरम है, अद्वेख है, अभेघ है, अलेख नाथ जानिए, सदीव सर्व ठौर में विशेख आन मानिए, न जंत्र मै न तंत्र मै न मंत्र बस आवई, पुराण यो कुरान नेद नेद कह बतावई, न करम मै न धर्म मै न भरम मै बताइए, गंज आद देव है कहो सु कैसे पाइये, जिमी जमान के विखे समस्त एक ज्योत है, न घाट है न बाढ़ है, न घाट बाढ़ होत है, न हान है न बान है, समान रूप जानिए, मकीन यो मकान अप्रमान तेज मानिए, न देह है न गेह है, न जात है न पात है, न मंत्र है न मित्र है, न

न रंग है, न मान है, न मौत है, न साक है, न संग है, न जच है, न गंधर्व है, न नर है, न नार है, न चोर है, न साव है, न साह को कुमार है, न नेह है, न गे है, न देह को बनाओ है, न छल है, न छिद्र है, न छल को मिलाओ है, न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को स्वरूप है, न राग है, न रंग है, न रेग है, न रूप है, न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को बनाओ है, न छल है, न छिद्र है, न छाया को मिलाओ है, न राग है, न रंग है, न रूप है, न रेग है, न कर्म है, न धर्म है, अजन्म है, अभेक है, न तात है, न माद है, अख्याल खंड रूप है, अछेद है, अभेद है, न रंग है, न रूप है, परे है, पवित्र है, पुनीत है, पुराण है, अगंज है, अभंज है, करीम है, कुरान है, अकाल है, अपाल है, ख्याल है, अखंड है, न रोग है, न सोग है, न भेद है, न भंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न सात है, प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमात है, न सीत है, न सोज है, न घ्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र के विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न द्वैख है, न भेख है, न दुई है, न द्रोह है, न काल है, न बाल है, सदीव दयाल रूप है, अगंज है, अभंज है, अभरम है, अभूत है, अछेद छेद है, सदा गंज गंज गंज है, अभूत अवेग है, बलि अरूप राग रंग है, न द्वैग है, न भेग है, न काम क्रोध कर्म है, न जात है, न पात है, न चित्र चिहन वर्ण है, बेअंत है, अनंत तेज जानी है, भूम अभिज है, सदा चिज तेज मानी है, न आद है, न व्याद है, अगाध रूप देखी है, दुख है, अदाग है, अच्छे प्रताप देखी है, न कर्म है, न भरम है, न धर्म को प्रभाव है, न यंत्र है, न तंत्र है, न मंत्र को रलाव है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र को स्वरूप है, अभंग है, अनंग है, अगंज से विभूत है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ मोहकार है, न आद है, न गाद है, न व्याद को विचार है, न रंग राग रूप है, न रूप रेख रार है, न हाव है, न भाव है, न दाव को प्रकार है, गजाधपि नराधपि करंत सेव है, सदा सिद्धस्पति तपस्पति वनस्पति जपस्सदा, अगस्त आद जे बड़े तपस्त बेबिसेखी है, बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ बेखी है, अगाध आद देव की अनाद बात मानिए, न जात बात मंत्र मित्र शत्रु स्नेह जानिए, सदीव सर्वलोक के कृपाल ख्याल में रह।

जय जय थके महावन गाय गंधर्व पार, हर हर थके सबै नहीं पाइये तह पार। नारद आदिक वेद व्यास मुन महान अनंत, ध्याय ध्याय थके सबै कर कोट कष्ट दुरंत। गाय गाय थके गंधर्व नाच पशर पार, सोध सोध थके महासुर।

दुर्जंदल दंडन असुर बिहंडन दुष्ट निकंदन आदि वृते जछरा सुर मारण पति दोधारण नरक निवारण गूढ़ गति अच्छे अखंडे तेज प्रचंडे खंडे उदंडे अलख मते जय जय हो सी मैखा सुर मर्दन रंभक बर्दन छत्रशिते आसुरी बिहंडन दुष्ट निगंदन पुष्ट उदंडन रूप ते चंडा सुर चंडन मुंड बिहंडन धूम्र

डावरू डबंगे बबर बबंगे भुजाफरंगे तेज बरंग लंगुड़िया बांधे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग।

चंडन मुंड बिमुंडन खांडया खंडन खून खिते दामरी दमंगन तुझा फरंगन फणी फुंकारण जोत जिते सरधार विवर खंड दुष्ट प्रकर खंड पुष्ट प्रहर खंड दुष्ट मथे जय जय हो सी मैंखा सुर मर्दन भूमा का सल उर्धे दामनी प्रहासन सुषम निवासन सृष्ट प्रकाशन गूढ़ गति

सहती सन्ना अष्ट प्रवाहन बोल निबाहन तेज तुलंग जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन भूमा का सपताल जलंग चाचर चमकारण छिछोर हारण धूम धुम कारण द्रप मथे दाढ़ विप्रदंते जो गुजयंते मनुज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूरज प्रतेजन अष्ट भुजे जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन भरम विनाशन धर्म धुजे घुंगुरु खमंकण शास्त्र झमंकण फणियर फुंकारण धरम धुजे अष्टाट प्रहासन सृष्ट निवासन दोष प्रणासन चक्र कते केसरी प्रवाहे सुध सन्नाहे अगमता है एक वृते जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन आद कुमार अगाध वृते सुर नर मुर बंदन दुष्ट निकंदन पृष्ठ बृन सन मित मथे कावरु कुमारे अधम उधारे नरक

संकटे निवारण धम उदाहरण तेज प्रकार खण तुंत तबे दुख दुख दहंती ज्वाल जयंती याद नाद गाद छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय हो सी सस प्रकार खण आद नील गाद भे चंचला जखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिछ सरे कर कसा।

रक्ता सुरखंडन शुंभ चक्रतन शुंभ मथे बारज विलोचन वृतन विमोचन सोज विसोजन कौज कसे दामनी प्रहासे सुख सरणा से शुभ्र सुभा से दुष्ट ग्रसे।

सुन लाजे किल बिक भाजे सुखूब राजे मध उरंग दुर्जन दल दझे मन तन रिझे सब न भजे रूह रणंग जय जय हो सी मै खासुर मर्दन चंड चक्र तन आद गुरंग चाचरी प्रजोधन दुष्ट विरोधन रोष अरोधन क्रूर वृते धूमराज विधुंसन प्रलय प्रजुंसन जग विधुंसन शुद्ध मते जाल पाजयंती शत्रु मथंती दुष्ट प्रताहन गाढ़ मते जय जय उसी मय खासुर मर्दन आद जुगाद अगाद गते खत्रियाण खतंगी अभय भंगी आद अनंगी अगाद गते बिडलाज बिहंडन चक्षुर दंडन तेज प्रचंडन आद वृते सुर नर प्रतिपारण पति दो धारण दोष निवारण दोख हरे जय जय हो सी मै खासुर मर्दन विश्व विधुन संसृष्ट करे दामनी प्रकाश उन्तरना से ज्योत प्रकाश अतुल बले दान वी प्रकर खण सर्वर वर खण दुष्ट प्रधर खण पितल तले अष्टायद बाहन बोल निवाहन संत बनाहन गूढ़ गते जय जय हो सी मै खासुर मर्दन आद अनाद अगाध वृते दुख दुख प्रवचन सेवक रक्षण संत प्रति

डुग डुकी दबंगे बाघ बबंगे भुजा भरंगे सुधगते जय जय उसी मैं खा सुर मर्दन आद जुगाद अनाथ मते चछरा सुर मारण नरक निवारण बत दो धारण एक बटे पापान बिहंडन दूज प्रचंडन खंड अखंडन काल कटे चंद्रानन चार नरक निवारे बत दो धारे मुंड मथे जय जय होसी मैं खा सुर मर्दन धूम्र विध्वंसन आद कथे रक्ता सुर मर्दन चंड चक्र दंधान वर्दन बिडाल बधे सरदार विवरखंड दुर्जन धरखंड तुल्लमरखंड धरम धुजे धूमराज विदुंसन सोणत जुनसन सोम

तुम कहो देव सर्वं विचार जिम कियो आव करते वसार जदा बभो तन भय आनंद तव कहो जथावत त्रैण तंत करता करीम कादर कृपाल अदव भूत अन भय दयाल दाता तुरंत दुख दोख रहत जिह नेत नेत सब वेद कहत कई उच नीच की नो बनाओ सब वार पार जाको प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड क्यों न सेवंत ताहे कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध सात सूरज सिवंत कई पलट सूरज सिजदा कराए प्रभ एक रूप द्वै कै लखाए अंशिज तेज अनभय प्रकाश दाता तुरंत अद्वै ना सब रोग शोक ते रहत रूप अनभय काल अच्छा स्वरूप करुणा निधान कामल कृपाल दुख दोख हरत दाता दयाल अंजन विहीन अनभंजनाद जल धल प्रभाव सर्वत्र साध जेह जात पात नहीं भेद भरम जेह रंग रूप नहीं एक धर्म जेह शत्रु मित्र दो एक सार अच्छा स्वरूप विचल पार जानी न जाय जेह रूप रेख कहे बास दास कहे कौन भी कहे नाम तास है कवन जात जेह शत्रु मित्र नहीं पुत्र भ्रात करुणा निधान कारण स्वरूप जेह चक्र चहन नहीं रंग रूप जेह खेत भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत के करत पाल उर्धंग विरहत सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल जुद्धंग अनूप जेह रूप रेग नहीं रंग राग अंशिज तेज अनभिज दाग जल थल महीब बंधन दुरंत जेह नेत नेत निस दिन उचरंत पायो न जाय जेह पर पार दीनान दोख दहता उदार कई कोट इंद्र जेह पान हार कई कोट रुद्र जुगिया द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मा आनंद जेह नेत नेत निस दिन उचरंत त्वा प्रसाद सवैये दीनन की व्रत पाल कर नित संत उबार गनी मन गारे पछ पशु नग नाग नराधे सर्व समय सबको व्रत पार फूकत है जल मै थल मै पल मै कल के नहीं करम बिचारे दीन दयाल दयानित दोखन देखत है पर देत नहार दाहत है दुख दोखन का दल जुजन के पल मै दलदारे खंड अखंड प्रचंड पहारण पूर्ण प्रेम की प्रीत संभार पार न पाए सके पदमा पद भेद गते भेद उचारे रोज ही राज बिलोकत राज रोख रुहान की रोज न टार कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भवेख भवान बनाए देव देव खपे अंग भेव न भेव लख्यो ब्रह्म शिव भरमाए वेद पुराण कतेव कुरान हसेव थके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पद श्यों किन श्री पदमा पद

है गनी मन को गारक है, साधन को रचक है, गुणन को पहार है, सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है, के क्रुद्ध को अभूत है, के अच्छे अविनाशी है, काम को कुनिंदा है, के खूबी को देहिंदा है, गनी मन गरिंदा है, के तेज को प्रकाशी है, काल हों के काल है, के सत्रण के साल है, के मित्रण को बोकत है, के वृद्धता की बासी है, जोग हों को जंत्र है, के तेज हों को तंत्र है, के मोहनी को मंत्र है, के पूर्ण प्रकाशी है, रूप को निवास है, के बुद्ध को प्रकाश है, के सिद्धता को वास है, के बुद्ध हों का घर है, देवन को देव है, निरंजन अभेव है, देवन को देव है, के शुद्धता को सर है, जान को बचैया है।

विश्व को भरण है गया पदा को हरण है सुख को करण है तेज को प्रकाश है पाई न पार परावार हूं को पार जागो की जत विचार सो विचार को निवास है हिंगुला हिमालय का वह बसी हल विधव पूर बिना पार पावया सत्या नाश है देवन को देव महादेव होंगे देव है निरंजन अभिवनाथ अविनाशी है अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है सेवक अधीन है कटैय जम जाल के देवन के देव महादेव होंगे देवनाथ भूम के भुजय है मोहय महाबाल के राजन के राजा महासाज हों के साजा महाजोग हों के जोग है धरय द्रुम छाल के कामना के कर है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के छीर कैसी छीरावत छाज कैसी छतरा नेर छपा कर कैसी छव काल इंद्र के कूल के हंस निसी सिंह रूम हीरा सिंह हुसैन वाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के पारसी पलाऊ गढ़ रूपा कैसे रामपुर सूरसी सुरंगाबाद निके रही झूल के चंपासी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदगढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी गलाज कमाऊ गढ़ कांसी बोर सी ससी सुरंगाबाद निके सोहियत है।

0: करा उतर बिताई जामनी प्रात भई जब आए।
1: साध संगत जी जदों इन्हें क्योंकि मैं बेनती करा प्यारियो ये इतिहास जिहड़ा ना यह पहले हो चुकिया सी ते इनू बाद दे विच हुण कविराज जी दर्ज कर रहे हैं अपां उस रूप दे विच लेना है। ते जदों बहादुर शाह ने फिर की कीता आप आ करके ओ महाराज जी तो माफी मंगना चाहुंदा।
0: गुरजदार पठे तबै दया सिंह बुलवाए।
1: इन्हें गुरजदारा नूं भेजिया ते कहण लगा क्योंकि वकील विचोले जिहड़े भाई दया सिंह जी सन क्या कि भाई दया सिंह जी आप जी इन्हां नूं आव के आप जी मैनू लै करके महाराज जी दे कोल चलो।
0: चौपाई गुरदर्शन को पठे तबै
1: नहीं भेद बताओ
0: भेद बतावो।
1: ते कहिंदा के महाराज जी महाराज ने सीधा कह दिता बेईमाना तेरे मथे नहीं लगना तू बेईमान है वचन करके खिसकण वाला वादा खिलाफी कीती है तैनू अपने मथे नहीं लाउणा। ते कहिंदा ए बहादुर शाह कहिंदा के जाओ महाराज दा मैं किस तरह दर्शन करना करा एदा भेद दसना करो।
0: पहुंचे मन कोप मिटावो
1: मैं कदों पहुंचा पहुंच करके महाराज जी दे अगे बेनती करना करा।
0: मैं चाहत गुरु मोल हमारा
1: मेल भाव के सतगुरु महाराज साडे नाल मेल नहीं करना चाहुंदे हन।
0: जानियो पूरब कूर उचारा
1: ते पहला ही महाराज ने कह दिता के भाई आ झूठा बंदा बेईमान बंदा
0: अब कर बेनती मैं बख्शावा
1: हुण बेनती करके गुरु महाराज जी तो मैं बख्शावा बख्शाउणा चाहुंदा हां।
0: विष मिटाए कर हृदय रिझावा
1: ते महाराज जी दा गुस्सा मैं शांत करके महाराज जी दी प्रसन्नता दा मैं पात्र बनना चाहुंदा।
0: सुन कर दया सिंह तब कहे
1: सुन करके भाई दया सिंह साहब जी ने वचन करना कहन लगे के बहादुर शाह एक बहुत वधिया समा मैं तैनू दसदा
0: हां।
1: कई दिनों तो असी वेखदे आ धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज
0: रात होत तट नदी
1: भयाना जदों अमृत वेला दिन चढ़दा ना सतगुरु महाराज दिने गोदावरी दे कंडे कंडे पातशाह जी सैर करदे हन।
0: इशनान खरे होए रहे
1: ते उथे ना गोदावरी दे विच इशनान करके मौजां दे मालक पानी दे विच ही खड़के ना उथे बैठे रहिंदे हन महाराज जी सिमरन करदे हन। हुण प्यारियो ए वी मैं बेनती करना करां कि अज दे जमाने दे विच कि कोई व्यक्ति जिहड़ा कोई सिंह जिहड़ा है कई वारी कि हुण इत्थे वी प्यारियो अपने कोल अरदास जदों हुंदी ना अरदास दे विच गंगा गोदावरी जी के इशनान इहदा वचन आउंदा क्योंकि वह गंगा जिहड़ी है सतगुरु महाराज जी ने उत्थे इशनान करना कीता बचपन दे विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी उत्थे इशनान करिया करदे गोदावरी दे विच वी प्यारियो इत्थे रोज महाराज जी इशनान करिया करदे तां जा करके गोदावरी दा जल जिहड़ा है क्यों इत्थे जल नहीं है प्यारियो लेकिन महाराज जी रोज गोदावरी दे विच इशनान करिया करदे सिंघां ने कहा कि बाद दे विच वी महाराज जी दे अस्थान दे आपां इशनान जिहड़ा गोदावरी दे जल दे नाल करना लेकिन अज दे मैं रूप दे विच बोलना प्यारियो मैं बेनती करा हाथ जोड़ के कि कोई सिंह जदों आपां गोदावरी विच जां कोई तीर्थ दे विच जा करके जदों आपां इशनान करदे हाँ ते कईआं ने कहना जी लो जी ये विप्रवाद हो गया। हुण अज प्यारियो मैं बेनती करा कि गोदावरी का पानी बहुत खराब हो गया बहुत गंदा हो गया पहले जिन्ने भी यात्रू आउंदे सी ना प्यारियो इत्थे हजूर साहब दे विच ते संगतां दी भावना हुंदी सी कि भाई असी इशनान करना है सरोवर सरोवर तां इत्थे गोदावरी है उहदे इशनान की महानता है ते संगतां प्यारियो रोज जिन्नी भी आउंदी ना घट तो घट एक बारी गोदावरी दे विच इशनान करदे सन भावना है प्यारियो अज चलो वह जल खराब हो गया जदों मेले लगते इन्नी संगत होंदी सी गोदावरी उत्थे बाजब दा टेंट लाउणे पैंदे सन बचपन दे विच खुद असी वेख्या लेकिन अज दे जमाने दे विच कोई प्यारियो आपां जदों कोई तीर्थ दे विच कोई दरिया दे विच इशनान कर लिया लोकां ने आही गल चक लैनी है आई कहना हुण जदों तख्त इशनान वाला भी दिहाड़ा आउंदा ते सारे सारे सिंह जिहड़े ना गागरिया सिंह आदि उह जा करके उत्थे अरदास बेनती करके गोदावरी विच चुब्बी लाउंदे हन। हुण की उह चुब्बी लाउण दे नाल कोई हिंदू थोड़ी बन गया हुण लोकां ने कई चीज़ां इस तरह ही बना लईआं प्यारियो हुण सतगुरु महाराज जी भी आप महाराज जी दा आप वचन पढ़ो कि

है ठीक 8:15 ते गुरुद्वारा गोबिंद बाग साहब विखे पहुँच के गुरु साहिबान जिया का इतिहास वेख के गुरु महाराज जी दियाँ खुशियां प्राप्त करो जी। वाहे

सुंदर प्रकार देख देख दे गुरु पंथ खालसी दिनो दिन चढ़दी कला रखनी सचे पातशाह जी महाराज।

जीवात आत्मा आत्मा वसुदेव सजे को जान भे नानक का दास है सोई निरंजन।

पाठ सदगुरु विठ वारिया जित मिलहि किसम संभालिया छिन तेरे उपदेश ज्ञान अंजन दिया नेत्र जगत निहालिया किसम छोड़ दूजे लगे डूबे।